0: Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters, authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
1: Ete hamare sponsor Curry Master ka sandesh. To hamare jo teesre mehman hain unko bhi
2: doctor ji ek pehli jo hai wo hum run kar rahe hain is program mein
1: ji ha wo bhi bata dete hain
2: to log agar matlab pehle ka utta dena chahe tab usme bhi winner choose karenge
1: to isme ek aur hum thoda clue de dete hain lagta kisi ko nahi lagta difficult ho gayi hai ki ye jo gaya hai wo ai ne gaya hai aur compose bhi ai ne kara hai
3: kya baat hai
1: मैं दोबारा से बोलता हूँ ये गाया है एआई ने कंपोज भी एआई ने करा है कितना मुझे पूनम जी चलो बात कर ही लेते हैं कल जब मैंने इसका सिलेक्शन करा था अगर यही एआई का हाल रहा तो क्या होगा कितनी कर्कश आवाज़ थी कितनी मधुर मैं तो मतलब कई बार इसको सुन चुका हूँ और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रभाव है अगर
3: तो आपने सर्च में क्या डाला
1: नहीं मैं काफ़ी इसको देखता रहा मैं ये कोशिश करता हूँ कुछ नई चीज़ लेके आएँ ए आई के ऊपर बहुत कुछ हो रहा है अभी मैंने थर्सडे को एक बहुत बड़ा इवेंट वो मतलब एक पॉलिटिकल वो था कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है अपोजिशन की पॉलिसी क्या है ए आई के ऊपर वो क्या सोचते हैं कैसे इसको मैनेज करा जाए कैसे कुछ लोग कंट्रोल में जाते हैं कुछ कहते हैं कि मैनेज करा जाए और इसका जो जो जो प्रभाव है पूनम जी वो हर चीज़ में है आप चाहे डॉक्टर हैं आप अकाउंटेंट हैं आप लॉयर हैं आप गीतकार हैं संगीतकार हैं फिल्म बनाने वाले डांस करने वाले हर चीज़ में इसका प्रभाव आ चुका है जो उसका हेल्थ में जो प्रभाव आने वाला है डॉक्टर साहब शायद आप ज़्यादा समझ पाएंगे इस चीज़ को वो बहुत बहुत बहुत दूर तक जाने वाला है अब इससे हम डरा जाए या हमें इसको अंगीकार करा जाए मैं समझता हूँ कि इसको अब रोका नहीं जा सकता है इसको अंगीकार करना होगा और आप ये मान के चलिए ना किसी के जॉब कम होने वाले कुछ नहीं होने लेकिन हमारे जो सोच की व्यापकता है वो बहुत बढ़ने वाली है आज आप जाएं कि किसी भी रीजनल टाउन में जाएंगे वहाँ पे डॉक्टर नहीं है जीपी से मिलने के लिए आपको एक महीने का वक्त चाहिए होता है कैसे चलेगा डेंटिस्ट का नहीं ये नहीं टेली मेडिसिन आज की डेट में अवेलेबल है क्यों नहीं इस्तेमाल करते प्राइवेसी प्राइवेसी क्या है प्राइवेसी अब प्राइवेसी ख़त्म हो गई सबके कंप्यूटर हैक हो चुके हैं सबके फ़ोन हैक हो चुके हैं
3: बिल्कुल सही
1: आप उसमें जाओगे तो कुछ नहीं रखा है लेकिन अब हमें अगर इस चीज़ को मैनेज नहीं करा जिसको एआई बायस बोलते हैं कि कौन आदमी अपनी चीज़ थोप रहा है जैसे आपने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन करो तो आप चाइना में होंगे तो उसकी कोई डेफिनेशन नहीं आएगी उस तरीके का चल रहा है तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा हमें देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया की वैल्यूज़ हमारे एआई में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे अब इसके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारे जो डाटा सेंटर हों वो ऑस्ट्रेलिया में हों अब उसकी बिजली कहाँ से आएगी
2: तो गुप्ता जी एक पहली बता दें इन लोगों को जिससे कि लोग उसका उत्तर देते रहें
1: हाँ
2: तो पहली ये है कि एक लता मंगेशकर का एक गीत है
1: जी चलिए आप
2: जो कि बहुत ही मतलब आज़ादी से जुड़ा हुआ गीत है
1: हाँ
2: जो कहते हैं कि मतलब लोगों में जज्बा बढ़ाता है आज़ादी का तो वो लोग हमें बताएं कि लता मंगेशकर जी का कौन सा वो बहुत मशहूर गीत है जिसे कहते हैं कि नेहरू जी ने भी सुना तो उनके आँख में आंसू आए थे
1: ये बहुत सा आसान वाला है
3: आसान से पहले
1: पहले डिफिकल्ट वाला गड़बड़ हो गया
2: हाँ
1: मैं सोच रहा था कि हमारे दर्पण के श्रोता थोड़े जो है ना वो हैं लेकिन
2: पहले तो दो है ना
1: अब पहली मतलब आप अभी तो ये हो गया कि कोई चीज में आप आंसर करो
2: नहीं हमारे पास दो टिकट है एक तो सुहाना सफर प्रोग्राम है उसके उसके उसके पांच
1: छह लोग विनर होंगे
2: हाँ और बंटवारा फिल्म है उसके हाँ। तो छह विनर होंगे
3: आज तो बहुत वैरायटी है हमारे पास तो आसान
2: बताएं कि वो गाना कौन सा था जो लता मंगेशकर का एक आइकॉनिक गाना है
1: तो एक
2: पहली लोग आंसर करेंगे
1: तो एक एक हाँ एक रेखा जी का हम कर ले हमने उनको बोला था 10 बजे करने का उनको ले लें रेखा जी को
2: हाँ जी मैं
1: आप लगाऊं मैं लगा लेता चलिए
4: हेलो यतीन जी
1: रेखा जी कैसी हैं
4: बस बस मैंने कहा
1: दर्पण रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है
4: बहुत बहुत धन्यवाद
1: आप रेडियो पे हैं लाइव हैं
4: अच्छा
1: मैंने कहा मैं बता दूंगा आपको
4: बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं को नमस्कार
1: तो रेखा जी बताइए आप 15 अगस्त में हमारे श्रोताओं को क्या सुनाना चाहती हैं
4: मैं एक नई कविता लेके आई हूँ यतीन जी और एक चार पंक्तियां मुक्तक है तो आशा है उनको पसंद आएगा और एक माहौल आपने बना ही रखा है तो वो आगे बढ़ाते हुए मैं ये पढ़ना चाहूंगी करते शत शत नमन आज आजादी के दीवानों को देश की खातिर कर डाला न्योछावर अपने प्राणों को फांसी हुई या जेल गए या चले गए काले पानी कैसे भला भुला पाए उन वीरों के बलिदानों को कैसे भला भुला पाए उन वीरों के बलिदानों को और अब मैं कविता पे अपनी मैंने जो कहा था नई कविता है रोली अक्षत चंदन लेकर भारत माँ को नमन करूं गगन धरा को और प्रकृति पावन माटी को नमन करूं दुनिया भर को योग दिया और वेदों का भी ज्ञान दिया संस्कृति और सभ्यता दी व अतिथियों को मान दिया ज्ञान शून्य का देकर अंकों को सार्थकता दी जिसने प्रेम और विश्वास सिखाया विश्व गुरु को नमन करूं बीज गणित और शल्य चिकित्सा सारे जग को सिखलाई आईटी और संचार माध्यमों में भी अग्रणी कहलाई वेद पुराण और गीता ने जीवन जीना सिखलाया शस्य श्यामला रामकृष्ण की दिव्य भूमि को नमन करूं जिसकी आजादी की खातिर वीरों ने बलिदान दिया काट गुलामी की बेड़ी फिर से माता को मान दिया लहर लहर लहराए तिरंगा देश प्रगति करता जाए लहर लहर लहराए तिरंगा देश प्रगति करता जाए अपनी पुण्य पवित्र धरा को जन्म भूमि को नमन करूं और इसका आखिरी स्टैंजा है
1: जी।
4: देश छोड़कर हुए प्रवासी नए देश बसने आए देश छोड़कर हुए प्रवासी नए देश बसने आए जाने कितनी बातें कितनी यादें अपने संग लाए सदा ध्यान रखा विदेश में देश का ऊंचा नाम करें देश पे कोई कष्ट ना आए यही प्रार्थना नमन करूं और रोली अक्षत चंदन लेकर भारत माँ को नमन करूं
1: क्या बात है बहुत खूबसूरत
4: जी अजय जी भी बैठे उनको भी नमस्कार
2: नमस्कार
1: सब लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं सब लोग आपकी आवाज
4: सुन रहे हैं जी और एआई की बात हो रही थी तो अब तो गजलें भी प्रोड्यूस कर रहा है एआई अपनी आवाज में
1: बिल्कुल
4: बहुत कुछ हो रहा है और आईडी भी आपकी पूरी चोरी हो रही है उस दिन मैंने अपना नाम डाला मेरी पूरी फैमिली के डिटेल्स बता दिए
1: जी जी
4: जबकि मेरे हस्बैंड और बेटा तो है ही नहीं सोशल मीडिया पर एक्टिव लेकिन ये एक रिस्क है बहुत बड़ा मुझे ऐसा
1: वो अभी रिस्क को आप अंगीकार करिए बस ऐसे मान के चलिए जैसे कि शादी करना रिस्क है लेकिन शादी तो करनी पड़ती है ऐसे मान के चलिए और उसको खूबसूरत बनाइए थैंक यू रेखा जी आज आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद
4: आपने जोड़ा अच्छा लगा
1: तो ये हमारी रेखा जी तो हमारी मैं तो उनको हिंदी की भाषा के लिए उनको मानता हूँ कि हमारे ऑस्ट्रेलिया में सी इज़ द लाइव एग्जांपल वो कहते हैं कि वो हमेशा याद
2: हिंदी का झंडा आगे लेके चले
1: हाँ कितना उनका प्रयास उनकी जो सतत प्रयास उनका हमेशा रहता है हिंदी के लिए तो रेखा जी आप जैसे लोगों की वजह से ही और दर्पण से आप जुड़ती हैं तो हम दर्पण से भी हम हिंदी भाषा की जो सेवा कर सकते हैं वो हमेशा करते रहेंगे तो क्यों ना हम अपने तीसरे मेहमान से जुड़े
2: हाँ हम जो आगे बढ़ रहे हैं कि जो हमने 15 अगस्त 1947 को
1: जी
2: कुछ हमारा सौभाग्य कि हमारे चूड़ियों में कुछ ऐसे लोग हैं जो उस समय उस माहौल को उन्होंने जिया उन लम्हों को एक्सपीरियंस किया तो हमारे मेहमान हैं श्री तिलक कालरा जी कालरा जी आप बताइए कि जो आपका क्या अनुभव रहा आपने क्या देखा क्या सुना
5: मैं छोटी जगह है चुनिया वहाँ पैदा हुआ था और वो पत्तोकी से 8 मील थे जहां से संतराम जी रहे
1: अच्छा अच्छा
5: ये गांव से थे मैं तहसील से था
1: अच्छा
5: मेरा ग्रैंडफादर वाज अ डॉक्टर
1: ओके
5: और माय फादर वाज वर्किंग विद एज अ फार्मासिस्ट और जो मुझे अभी भी याद है जो दुकान थी जहां पे मेरे ग्रैंडफादर काम करते थे बहुत बड़ा मैदान था जहां हम लोग खेलते खेलते थे और सामने मस्जिद भी थी उसके थोड़े देर पहले हम लोग किराए के मकान में रहते तो फिर 6 महीने पहले माय ग्रैंडफादर बिल्ड ए न्यू हाउस तो बीच में ये मैं देख रहा था पुलिस आती थी किसी घर की तलाशी लेते थे कि कोई हथियार वगैरह तो नहीं कर पान हो उस टाइम पे वही होता था मोस्टली तो वो ले जाते थे किसके पास लेकिन जब डिसाइड हुआ कि हमें चलना है तो पिताजी ने और मेरे ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि जो हमारे पास पैसे यहीं छोड़ जाएं या साथ में लेके जाएं फाइनली डिसाइडेड वी टेक विद अस उस जमाने में उस टाइम पे 8 मील के लिए बैलगाड़ियों में आधे लोग इस तरफ आए थे हम लोग पत्तों की क्योंकि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वाज अ पत्तों की और बुलाकार्ड में उस जमाने में पिताजी ने बताया था कि 250 रुपए पर फैमिली ने दिए थे उस टाइम पे
1: बताइए 250 रुपए तो बहुत थे
5: और उसके बाद हम लोग प्लेटफार्म पे 2 हफ्ते रहे इंतजारी के लिए कि कौन सी ट्रेन ठीक होगी तो हम लोग अमृतसर जाएं
2: तो मतलब ट्रेनें रोज नहीं चल रही थी
5: ट्रेनें चल रही थी
2: जी
5: लेकिन कौन सी ट्रेन ठीक है नहीं है
3: अच्छा, इस चीज का अंदाजा लगाना मुश्किल
5: था और हम लोग स्टेशन इस तरफ था हम लोग को बीच का जो प्लेटफार्म है वहां पे 2 हफ्ते वहां रुके और जब भी दोनों तरफ से गाड़ियां आ जाती थी तो हमारे पेरेंट्स बोलते मेन रोड पे चले जाओ मेन स्टेशन की तरफ चले जाओ क्योंकि डर था और उसके बाद जब हम लोग चुनिया से पत्तों की आए तो 4 गोरखे थे एक आगे एक पीछे और एक साइड साइड में हम लोगों को बचाने के लिए
1: बताएं
2: तो ये किसने अरेंज करे होंगे
5: मैं ये नहीं बता सकता मैं यही बता सकता हूं
2: जी
5: कि ये थे उन्होंने हमें
2: अच्छा
5: वहां पे पत्तों
3: की तो आप देखिए कि ये प्रिविलेज्ड फैमिलीज थी जिनके साथ है एक आम आदमी के लिए तो ये सब कुछ नहीं
5: मौजूद हम अकेले नहीं थे
3: जी जी
5: बहुत सी बैलगाड़ियां थी
3: जी
5: और हर फैमिली ने 250 रुपए दिए थे
2: तो आपने प्लेटफार्म पे 2 हफ्ते बिताए
5: हां जी 2 हफ्ते बिताए उसके बाद क्या हुआ कि एक ट्रेन में बैठे हम लोग
3: और वहां खाने पीने का इंतजाम
5: खाने पीने का ऐसा ही था कुछ लोग आते थे दे जाते थे कुछ वहीं पे ही बनाया जाता था
3: ओके
5: और इमेजिन करिए बारिश भी होती थी अगस्त के महीने
3: और ये तो मतलब बहुत सारे लोग होंगे प्लेटफार्म तो बड़ा लिमिटेड
5: अब मैं ये नहीं बताता कितने लाख है इतना याद तो नहीं है लेकिन जब ट्रेन में बैठे तो रायविंड लाहौर से थोड़ा पहले है एक जगह
3: जी जी
5: तो वहां पे ट्रेन रुकी और अब पिताजी ने बोला कि भाई आप नीचे घुस जाओ
3: सीटों के नीचे हां
5: सीटों के नीचे डर था लेकिन वहां पे भी गोरखे थे उन्होंने कुछ गड़बड़ होने नहीं
3: दी अच्छा
5: लाहौर जाने लाहौर से करीब मेरा जहां तक ध्यान है कि 25-30 मील 50 मील के करीब
2: तो फिर वो जो ट्रेन थी वो भी खचाखच भरी होगी बिल्कुल हर कोई जाना चाहता था
5: ये अब ये मैं नहीं बता सकता इतनी देर तक नहीं पर काफी लोग थे
3: काफी लोग थे
5: तो फिर अमृतसर जब पहुंचे तो हम लोग वो आई थिंक किसी कॉलेज में हमें रखा गया था 2 हफ्ते के लिए खालसा कॉलेज यही तो वहां पे खाना वाना मिलता था और उसके बाद हमारी एक मौसी थी वो डेहराडून में थी
3: जी
5: तो डिसाइड किया गया भी चलो वहां चलते
3: वही सबसे नजदीक है वहीं चला
5: गए तो वहां से डेहराडून गए तो रास्ते में हमें खाने के लिए सामान दिया जाता ट्रेन पे प्लेटफार्म पे लोग के आके सामान देते थे और दुर्भाग्य की ये बात है कि वहां पे भी दंगे हो रहे थे उस टाइम पे और रात को हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे और सीढ़ियों के पे लाइव वायर रखी जाती थी
2: ये देहरादून की बात कर रहे हैं
5: हां जी देहरादून की बात कर रहे
2: हैं अच्छा
3: मतलब जिंदगी का जैसे कोई आप रात सोए हैं सुबह उठेंगे किसी को नहीं पता
5: किसी को नहीं पता
3: ऐसी अनसर्टेनिटी थी
5: और उसके बाद फिर डिसाइड किया गया कि भाई हम लोग जालंधर वहां अमेरिका में 2-3 महीने रहे हम लोग और जालंधर चले गए तो माय ग्रैंडफादर वाज क्वाइट ओल्ड एट दैट टाइम तो ही कुड नॉट प्रैक्टिस मच तो माय फादर स्टार्टेड वर्किंग विद अनदर डॉक्टर एज ए फार्मासिस्ट। तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम तो थी, इतनी प्रॉब्लम नहीं थी कि जाओ जहाँ से निकले थे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी।
2: तो सकता हूँ ये सब हमने जो अनुभव सुने थे वो बॉर्डर के एरियाज के थे, लाहौर के थे, पर हमारे साथ मिस्टर शर्मा भी हैं जो उस समय दिल्ली में थी,
3: दिल्ली में थी। हाँ।
2: तो आप अब बताइए मिस्टर शर्मा कि आपका कैसा रहा है अनुभव उस टाइम पे, आपने क्या सुना क्या देखा?
6: हाँ, वैसे तो मैं भी लाहौर की ही हूँ
2: जी।
6: मेरे पिताजी भी डीएवी कॉलेज के प्रोफेसर थे, मेरे दादाजी भी डीएवी कॉलेज में प्रोफेसर थे, और डीएवी कॉलेज में हमने बचपन में एक दो लाइनें अगर गा के सुनाऊं तो वो एज ए हमने प्रेजेंट भी किया हुआ है।
3: श्रोताओं मैं बताना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, जब हम भजन की बात कर रहे थे तो इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो जुराए ज़रूर सुनाए प्लीज।
6: तो वो था बुझा दूँ हंस कर जीवन दीप, देश पर होना है कुर्बान, वतन पर होना है कुर्बान। डीएवी कॉलेज का एनुअल फंक्शन था, मैं और मेरे से छोटी एक सिस्टर, हम लोगों ने ये वाला बोला था, तो माहौल जो था इतना ज़्यादा जोशीला था उस समय, लोगों के अंदर जोश था, और हमारे परिवार में सब पढ़े लिखे थे लोग, तो इसलिए वो कहते थे कि राज बदल जाते हैं, पब्लिक इधर से उधर लोग नहीं जाते, वो वहीं रहते हैं, तो उनको ये विश्वास था कि हम यहीं रहेंगे अगर ब्रिटिश रूल चला भी जाएगा।
2: ये
6: तो
2: कौन से सन की बात थी?
6: 47 की बात।
2: अच्छा, वो जो आप बता रहे हैं जो। हाँ।
6: तो उस समय, लेकिन फिर भी जो डर था, फैलाव था उस समय, जैसे इन्होंने सबने बताया भी आग नीचे से घरों के अंदर लगा देते थे, और हम स्कूल में जब मैं 8-9 साल की होंगी तब, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद बच्चों को जाके ऊपर छत के देख के आओ कितनी जगह आग लगी हुई है।
3: अच्छा।
6: घरों के नीचे से आग लगा देते
3: थे। ये दिल्ली का माहौल था,
6: लाहौर की बात।
3: अच्छा, लाहौर की बात।
6: तो वो छतों पर से जाके हम गिन के आके बताते थे कि इतनी आग, धुएं से धुआं जो दिखते थे भी, इतनी जगह 5-10 जगह 15 जगह, तो ये डर का माहौल तो था ही, सब घर में ही रहते थे। और उसके बाद लेडीज़ को, औरतों को निकालने की कोशिश की सबसे पहले कि बच्चों को और लेडीज़ को निकालें। तो मेरे ताई जी कांग्रेस में एक्टिव मेंबर थे बहुत, और उनको इनविटेशन था लाल किले का 15 अगस्त का।
3: अच्छा।
6: उनको इनविटेशन था, वो हम तीन बहनों को लेके, क्योंकि जॉइंट फैमिली में हम लोग रहते, तो उन्होंने अपनी लड़कियों को तो पहले ही बॉम्बे भेज दिया हुआ था, एक की शादी हो गई थी तो दो को अपनी लड़कियों को भेज दिया था। फिर हम तीन बहनों को लेके, एक मेरे से बड़ी एक मेरे से छोटी, वो दिल्ली आई। उन्होंने अटेंड करना था 15 अगस्त का जो प्रोग्राम था,
2: वो भी ट्रेन से ही आए होंगे,
6: ट्रेन से ही आए हम लोग। लेकिन दरियागंज में मेरे बुआ जी ऑलरेडी यहीं थी, वो पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर थे हमारे अंकल, तो उनके घर में भी बच्चे औरतें ऑलरेडी थे, रिलेटिव्स आके रुके हुए थे, हम भी उन्हीं के घर में रुके
3: रुके।
6: लेकिन जो 15 अगस्त का सीन है वो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, इतना जोश, इतना
3: वो पहली जो
6: थी जन 15 अगस्त की आज़ादी का, दरियागंज आपको गोलचे वाला जो मेन रोड है
3: जी,
6: उसके ऊपर पैर रखने की जगह नहीं थी, इतने लोग सब भरा हुआ बाजार, और लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, उस पर राष्ट्रीय गान चल रहे हैं, झंडे पूरी दोनों तरफ से झंडे सजाए हुए सड़क को, और पानी के लिए मीठे पानी की छबीले, और मिठाई तो ऐसे बट रही है जैसे कि शादी में भी नहीं बटी होगी, इतना खुशी का माहौल था कि लोग रेड फोर्ट तक तो जाना बहुत मुश्किल, वहीं पर थे सब।
2: तो एक बात पूछना चाहूँगा, पहले से पता था कि आज़ादी 15 अगस्त को मिल रही है, वो तो उसकी तैयारियाँ होने लगी थी,
6: बहुत तैयारी 15 अगस्त को, तो वो पहला 15 अगस्त मैंने वहाँ देखा।
3: लाल किला तक पहुँचने के लिए इधर जामा मस्जिद भी आता है, सारा मुसलमानों का एरिया, तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि कोई उधर से भी भड़के के भाई,
6: बिल्कुल शांति खुशी का माहौल, कुछ कहीं किसी को कोई
3: मुसलमान भी होंगे फिर तो جو دلی رہ گئے پاکستان نہیں گئے
6: وہ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ ہندو مسلمانوں کا کیا
3: ایسی
6: کوئی اس سمے ایسی ہلچل نہیں تھی اس سمے وہ جو ماحول تھا میں
3: آپ نے وہ اچھا ماحول
6: بہت بہت بہت ایسا میں نے کبھی آج تک اس کے بعد نہیں دیکھا وہ جو یاد ہیں یا بچپن کی کہیے میموریز ہیں لیکن وہ جو خوشی کا ماحول تھا آزادی کا جو جوش تھا لوگوں میں
3: تو آپ کہہ رہے ہیں آپ بھی لاہور کے ہی تھے تو آپ کتنے سمے پہلے نکلے وہاں سے
6: ہم 9 اگست کو نکلے
3: ایک سال پہلے اچھا 9 اگست کو
6: نہیں 9 اگست
2: کو جب وہاں سے نکلے تو آپ کا کیا انبھو رہا مطلب آپ کو بھی دنگوں کا کچھ سامنا
6: جو ہم نکلے میں بتا رہی میں تائی جی تھے اور ہم 3 بہنیں تھے تو میرے ایک بردر وہاں انٹر میں جو پڑھ رہے تھے ایک انٹر میں تھے ایک بی اے میں تھے جو ڈی اے وی کالج میں ہی پڑھتے تھے تو جو انٹر میں پڑھ رہے تھے وہ آئے تھے سمے چھوڑنے کے لیے اور وہ جب واپس گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو ٹانگا کیا انہوں نے گھر واپس جانے کے لیے تو انہوں نے بتایا کہ اس محلے میں ہم نے جانا ہے تو وہ ٹانگے والا ان کو مسلمان محلے کی طرف لے گیا اس طرف جانا شروع ہو گیا تو وہ ڈر گئے کہ یہ غلط راستے پر لے جا رہا ہے تو وہ ٹانگے سے کود کے بھاگ کے پھر اپنے محلے میں گھر تک پہنچے
3: اچھا اچھا
6: ان کے ساتھ یہ ہوا لیکن ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا ہم بڑے آرام سے دلی پہنچے اور اس کی وجہ سے ہم نے یہاں کا 1 اگست اور 80 سال ہو گئے دیکھتے ہوئے 15 اگست ہم میں لکی اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ میں
3: آپ نے وہ سمے بھی دیکھا
6: وہ بھی دیکھا اور
3: بہت بڑھیا
7: یہ جو یادداشتیں ہیں وہ آج ایسے آج آج ایسے سوتا ہو رہا ہے کہ وہ سمے واپس آ گیا جی
2: بہت ہی مارمک ہے ایسے پرسنگ اور ہمارے پاس ایسا سوباگیہ کہ ہم ہمارے ساتھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو جیا
3: مطلب ایک بات سننا کچھ اور ہوتا ہے کہانیاں سننا کچھ اور ہوتا ہے بٹ آپ کے منہ سے جب ہم سن رہے ہیں کیونکہ آپ نے تو خود اسے انوبھو کیا
7: تو ایک چھوٹا سا بریک ہو جائے اور ایک ایسا سنواتے ہیں شاید ان سب کے ساتھ میں جڑا ہوگا

0: श्रोताओं ये गाना ये ऐसा है कि शायद हमारे जो भी मेहमान हैं उनकी उनकी यादों से कहीं ना कहीं तो जुड़ा होगा तो पूनम जी हमारे काफी लोगों के संदेश भी आए हैं उनको भी हम पढ़ते
1: थे वो हम शेयर करना चाहते हैं तो प्रदीप जी ने कहा लिखा शुरू में ही कार्यक्रम का शुभारंभ सत्या जी ने एक छोटा सा क्लिप भेजा है कि किड्स ऑफ टुडे डोंट नो व्हाट स्ट्रगल इज ड्यूरिंग आवर टाइम्स वी हैव वॉच्ड इंग्लैंड वर्सेस नाइजीरिया मैचेस ऑन ब्लैक एंड व्हाइट टीवी इफ यू इंक्रीज ब्राइटनेस इंग्लैंड टीम डिसअपीयर्ड रिड्यूस द ब्राइटनेस Nigeria team disappeared. And if the wind blew a bit to sway the antenna, both the teams disappeared. Phir Leela ji likhti hain, Poonam ji ki madhur awaaz mein samacharon ki prastuti saraniya rahi. Thank you Leela ji. Rekha Rajvanshi ji ka vichar pure swatantrata sangram ka nichod tha. ये शायद रेखा जी ने नोटिस नहीं किया उन्होंने शुरू से मैंने उन्हीं का उनकी चार लाइनें पढ़ी थी राजेश जी लिखते हैं नमस्कार जी देर वॉज रोटी एंड कमल का फूल ऑल्सो प्लेड सम रोल इन 1957 रिवोल्ट अजय जी प्रदीप जी लिखते हैं अजय जी ने 1957 के सैन्य विद्रोह को की कहानी बहुत ही रोचक अंदाज में सुनाई वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ था पूर्ण स्वतंत्रता पाने में हमको 90 अतिरिक्त वर्ष गुलामी की खेलने पड़े थे यदि वह प्रयास सफल हो गया होता तो आज का भारत एक परिपूर्ण विकसित देश होता फिर वो लिखते हैं एज इट वॉज नॉट ऑर्गेनाइज एंड नो सच लीडरशिप इन 1957 रिवोल्ट बिकॉज ऑफ दिस इट वॉज नॉट सच सक्सेस लीला जी लिखती हैं एक छोटी सी कविता भेजी है उन्होंने शीर्षक है बंटवारे के दंश देश के बंटवारे के दर्द को कैसे बुलाया जा सकता लाखों का विस्थापित होना कभी भुलाया ना जा सकता दुर्भावना का जहर समाप्त हो सद्भावना का पुण्य भर्व हो अनेकता में एकता भाव का पुनः पर पनपना संभव हो बंटवारा झेला नहीं जिन्होंने वे हैं बंटवारे के दर्द से नितांत छूटे भुक्त भोगियों का क्या हाल होता बंटवारा झेलने वालों से ही पूछें बंटवारे का दर्द आज भी सताता है अपनी जन्मस्थली की याद दिलाता है आज भी याद आते हैं जो उस दिन बिछुड़े बंटवारा और दंश छोड़ ही जाता है स्वरचित किया लीला ललतवानी जी ने इसके बाद फिर राजेश जी लिखते हैं इट्स अ नाइस इन्फॉर्मेशन विच वी आर हियरिंग नाउ रिगार्डिंग द पर्सन्स फ्रॉम लाहौर शैला जी लिखते हैं यतेन जी आपकी प्रस्तुति एक बार फिर से देशद्रोहियों के प्रति आग भड़का देगी जब आपका जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसको दोष दें 379 मिलियन भारतीय जनसंख्या व 200,000 अंग्रेज क्या हमारे पूर्वज इतने नपुंसक थे अंग्रेजों को छोड़ने को खदेड़ने में कतई नहीं जयचंद जैसे विश्वासघाती अधर्मी आज तो हैं ही उस समय भी अधिक रहे होंगे किंतु अविनाशी भारत को तोड़ना संभव नहीं स्वदेश की विलक्षण शक्ति व क्षमता पर आज हमें गर्व है जय हिंद जय भारत बहुत बढ़िया शैला जी वह 200,000 अंग्रेज क्या हमारे पूर्वज इतने नपुंसक थे अंग्रेजों को छोड़ने को खदेड़ने में कतई नहीं जयचंद जैसे विश्वासघाती अधर्मी आज तो हैं ही उस समय भी अधिक रहे होंगे किंतु अविनाशी भारत को तोड़ना संभव नहीं स्वदेश की

0: अभिनेता प्राण केशव, जब तक मजबूरी ना हो कौन कमबक छोड़ता है लाहौर. लाहौर वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सिटीज इन द वर्ल्ड. संत साहब की बातचीत सचमुच ऐसा ही लग रही है जैसे परिवार ने हमको बताई थी. हम भी बंटवारे के ऐसे ही भुक्त भोगी हैं, लीला जी कहती हैं. शैला जी लिखती हैं, ऑल्दो आई डिड नॉट एक्सपीरियंस द पेन एंड एट्रोसिटीज ऑफ बंटवारा, माई बुक ए डीरेंज्ड माइंड इज अबाउट जलियांवाला बाग एंड इट्स एपिजेनेटिक इफेक्ट ऑन द नेक्स्ट फोर जनरेशंस. फिर किसी ने लिखा है कि ए आई सिंगर एंड ए आई कंपोजर, पहेली का उन्होंने जवाब दिया. रेणु जी लिखती हैं, लता सॉन्ग इज ए मेरे वतन के लोगों, तो उन्होंने भी जवाब दे दिया. फिर डीके जी लिखते हैं, लता मंगेशकर का गाना ए मेरे वतन के लोगों. फिर एक और मैसेज आया है, वह उसमें लिखा है, लता जी का सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी. एक और मैसेजेस में भी यही गाना उन्होंने मेंशन किया है. राम दुबे जी लिखते हैं, गुड प्रोग्राम टीम, द डिस्कशन अबाउट ए आई इज़ रियली टॉपिकल. फिर नमस्कार दर्पण टीम, डाटा मंगेशकर सॉन्ग है ए मेरे वतन के लोगों, एक्सेलेंट प्रोग्राम सो फार, थैंक यू. लीला जी लिखती हैं, पहेली का उत्तर है मेरे वतन के लोगों. तो काफ़ी लोगों ने इसे रिकॉर्ड कर लिया है. किसी ने पूरा गाना ही लिख दिया है. उसमें प्रदीप जी लिखते हैं, रेखा जी की देश प्रेम कविता ने स्वतंत्रता दिवस विशेष कार्यक्रम को और सुंदर बना दिया. सुंदर काव्य पठन के लिए साधुवाद रेखा जी. फिर रेखा जी उनका जवाब देती हैं, बहुत आभार यतीन जी और अजय जी, हार्दिक धन्यवाद सबका. प्रदीप जी लिखते हैं, बहुत सामयिक कार्यक्रम, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक. सुनील जी लिखते हैं, ग्रेट दर्पण प्रोग्राम प्रोग्रेसिंग ऑन ए आई, वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ डिस्कशन एंड गाइडेंस. लीला जी लिखती हैं, रेखा जी की अप्रतिम देश प्रेम की कविता ने स्वतंत्रता दिवस विशेष कार्यक्रम को और भी सुंदर बना दिया है. रेखा जी लिखती हैं, बहुत अच्छी जानकारी, ये इतिहास ही हमारी धरोहर है. लीला जी फिर लिखती हैं, हमें बहुत खुशी है कि हम रेखा जी, राजवंशी, संत साहब, कालरा साहब, शारदा शर्मा जी और ब्रह्म शर्मा जी से पूर्णतः गहन संपर्क में हैं. रीता जी ने लिखा है, मेरे वतन के लोगों. शैला जी लिखती हैं, शर्मा जी, तिलक जी, वसंत राम जी के संस्मरण हृदय विदारक हैं. भारत के विभाजन की वेदना असमरणीय है. हेमलता जी लिखती हैं, दर्पण नमस्ते, रेडियो प्रोग्राम टीम, ऑल माय फ्रेंड्स, वेरी इंजॉयबल इंटरेस्टिंग प्रोग्राम अबाउट बंटवारा, अबाउट द बंटवारा इंटरव्यू इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आई डोंट नो दिस, आई वॉज ओनली 6 years old. थैंक्स टू दिस इंफॉर्मेशन अगेन.
1: तो ये तो थे हमारे श्रोताओं, ये श्रोताओं के थे. तो एक हरियाली चीज करके क्रूज हो रहा है, क्रूज हो रहा है,
0: इस बार क्रूज है
1: जी, क्रूज हो रहा है. तो ऋचा जी इसकी पूरी कंडक्ट कर रही है, तो ऋचा जी का तो मालूम है.
0: वो जो काम करती मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने ये नहीं अटेंड किया तो जरूर करें. ऋचा जी बहुत ही अच्छे से इसे ऑर्गेनाइज करती हैं,
1: और ये अगले संडे 23 तारीख
0: जी जी एंटरटेनमेंट से लेकर जिसे कहते हैं ना इन्फॉर्मेटिव, वहाँ आपको खाने पीना का तो मिलेगा ही, साथ में शॉपिंग का भी अवसर मिलता है.
1: संगीत, संस्कृत एंड सनातन तो 12 से 4 के बीच में होगा. और
0: कहाँ से चल रहा है जरा डिटेल?
1: मैं वही दे रहा हूँ. तो बोर्डिंग होगी 11:45 शार्प, किंग स्ट्रीट वॉर्फ, डार्लिंग हार्बर पे होगा.
0: बहुत अच्छा.
1: और इसका जो प्राइस है वो $105 ईच है, या 10 टिकट अगर लेते हैं तो $1000 का है. इसमें तो एक्चुअली खर्चे इतना हो जाता है, तो ये कोई प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगा. तो अगेन 23 तारीख अगले संडे को है. और ज़्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो ऋचा जी को आप फ़ोन कर सकते हैं. उनका नंबर है 0413-461-293, 0413-461-293. और हाँ, तो अभी एक छोटा सा हम एक ब्रेक लें, क्योंकि हमें अपने स्पॉन्सर का भी ध्यान रखना पड़ता है.
2: For personal or business tax or self-managed super fund accounts and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices.

0: Chindarpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095 9405, that's 8095 9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Durban Radio.
1: You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au.
2: आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारी वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं.
3: श्रोताओं, जैसे हमने कहा था शुरू में कि एक कार्यक्रम हो रहा है, बड़ा म्यूजिकल कार्यक्रम है, इसका नाम है सुहाना सफ़र सीरीज़ 2. एक सीरीज़ 1 पहले हो चुकी है, तो इसके जो आयोजक हैं केदार जी हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करने वाला हूँ. केदार जी नमस्ते. हाँ, अच्छा, तो कुछ केदार जी बताइए इस कार्यक्रम के बारे में.
4: हाँ जी, ये जो है सुहाना सफ़र जो है, ये मेरी कॉन्सर्ट कोविड के बाद सीजन 1 हुआ था एट द नॉर्थ राइट स्कूल ऑफ आर्ट्स इन कॉक्सेस रोड, नॉर्थ राइट. तो आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ राइट इंडियन एसोसिएशन एंड वी आर, दिस इज अ कम्युनिटी इवेंट. सुहाना सफर सीजन 2 जो है, इट्स अ लाइव बैंड और इट इज अ बॉलीवुड कॉन्सर्ट, ऑल ब्यूटिफुल ओल्ड सॉन्ग्स एंड अ फ्यू न्यू सॉन्ग्स एज वेल. Or is and we've got some very very young talented singers as well. I'm giving them an opportunity as well. So it'll be a very very good concert. But is ye concert ki highlight jo hai, I've got Bollywood maestro Mr. Mustafa Sajjad bhai. He's come from India. Okay. He is a Dada Saheb Phalke Award winner and he's a mandolin maestro. 22,000 songs उन्होंने बजाया है, हाँ, over 5 decades. So he has, we are so honored to have him. I am so honored to have him perform at this Suhana Sakhar season 2 concert. He is the jewel in the crown for us, and he has agreed to come and play for 10-15 minutes. तुझे देखा तो है जाना सनम, ऐ मेरे ज़ोर ज़री. I mean, all आप सोचो जो भी आप कहना, he has played with all the musicians, all the directors, singers, Asha ji, Lata ji, Lakshmikant Pyare Lal, Dira Kalyan ji, Anand ji, Madan Mohan. So, inki matlab
3: kya naam bataya aapne? Ek baar phir bata dijiye shrotaon ke liye.
4: Inke naam hai Mustafa Sajjad bhai.
3: Acha.
4: He is the son of late music director Sajjad Hussain Sahib. And and people who follow, he was a very very, he actually gave break to Lata ji and Achha. And he was a very strict perfect music director. He was also a mandolin player as well. He introduced mandolin in India.
3: Achha.
4: Because mandolin is an Italian instrument.
3: Achha. To Kedar bhai, zara ye karyakram ke bare mein bata dijiye, date or time.
4: Ha ji, ye hai 27th August. Which is ये दिन जो है ना, वो थर्सडे है और 7 बजे से शुरू होता है. और ये है नॉर्थ राइट स्कूल ऑफ आर्ट, कॉक्सेस रोड, नॉर्थ राइट. और वहाँ पे देखिए पार्किंग भी बहुत है, वहाँ पे स्ट्रीट पार्किंग है. देर इज आई थिंक वेरी नॉमिनल पेड पार्किंग एज वेल, सो उसकी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको.
3: आज के प्रोग्राम में एक पहली रन कर रहे हैं, जिसके विजेता को जो आपने बहुत ही जनरस है, आपने 5 टिकट दिए उनको, तो विनर्स को हम डिक्लेयर करेंगे जो उनको.
4: जी हाँ, आई वुड लव फॉर यू टू गिव अवे 5 टिकट्स एंड इफ दे कैन कम एंड सपोर्ट. और आपका जो वेबसाइट है या व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने अजय जी फ्लायर्स मैंने आपको डाल दिया. एंड ऑल्सो वन मोर अट्रैक्शन इज आई हैव गॉट रैफल बींग ड्रॉन बाई सैंटा विलास. They are giving away 3 nights and 4 days and 4-star accommodation in Bali breakfast and transfers. But you have to come and buy very nominal raffle tickets at the hall. So there is excitement for everyone, you know.
3: तो केदार जी आपके समय के लिए बहुत बहुत बहुत धन्यवाद और आपके मतलब आज समय की कमी है नहीं तो आपके आपका गाना जरूर सुनते हैं
4: कोई बात नहीं जी आप जो हमको मौका दिया उनके लिए बहुत आभार हूं थैंक यू
3: थैंक यू वेरी मच थैंक यू बाय
4: थैंक यू वेरी मच थैंक यू
3: बाय
5: बाय curries but don't have hours to spend in the kitchen introducing curry masters the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian-made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters. Authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
6: श्रोताओं कैसा लग रहा है प्रोग्राम आपको
3: हमारे लिए एक बार मैं बोल दूं फिर से हाँ, हाँ, लोगों ने जो सुना नहीं हुआ पहली को
6: हाँ, बिल्कुल,
3: कि
6: बिल्कुल,
3: एक लता मंगेशकर जी का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध गीत है जो उस गीत के बारे में बताइए जो देशभक्ति का गीत है जो सब जानते हैं तो वो गीत क्या है
6: जो अगले ब्रेक में है वही गाना सुनाने
3: वाला गीत का अगर उत्तर दिया तो आपको जो पहली आपको मिल सकती है पहली जीत सकते हैं आप
6: तो सादा जी के आवाज में एक उन्हीं की हम कविता सुनते हैं गाना सुनते हैं
7: अभी जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे हैं वही गाना मैं एक प्यारे में आपको सुनाती हूँ ये कवि प्रदीप कुमार जी का लिखा हुआ है और संगीतकार थे रामचंद्र और गायिका थी लता मंगेशकर समय था 1962 चीन के युद्ध के बाद और 26 जनवरी 1963 को गाया गया था और प्रधानमंत्री उस समय थे जवाहरलाल नेहरू जो रो पड़े थे इस गाने को सुनकर उसका मैं थोड़ा सा हिस्सा आपको सुनाती हूँ

0: बहुत बढ़िया
1: क्या बात है शादी बहुत अच्छा आपने तो ना केवल अपनी बातें बताई लेकिन आपने मधुर आवाज से लाइव म्यूजिक हो गया है ना
2: आज देशभक्ति का पूरा माहौल
1: पूरा माहौल हो गया है तो डॉक्टर साहब ऐसा है कि समय जैसे कि होता हमेशा हमें धोखा देता है हम बताता है जैसे कि दो घंटे
2: लगता है कि जो सीमा नहीं होनी चाहिए समय की
1: जी
2: पर क्या करें कि सीमा है
1: जी तो क्यों ना हम अपने चारों मेहमानों से उनके द्वारा सुने जज्बो जो भी कहना चाहते हैं और फिर हम समापन की तरफ जाते हैं तो पहले हम शुरू करते हैं बजाज जी से
3: जी उस वक्त की जो हैवानियत फैली थी उससे कितनी लाखों करोड़ों लोगों को एक्चुअली फ़र्क पड़ा है कुछ ऐसी हैवानियत वर्ड भी शायद गलत ही होगा क्योंकि हैवान भी या जो जानवर भी हैं वो भी ऐसा काम नहीं करते, बिना मतलब के इनडिस्क्रिमिनेटली लोगों को मारा गया।
2: आंकड़े बताते हैं कि करीब 10 लाख लोगों की जे
3: दस लोग तो हाँ बिल्कुल दस लोग हाँ। तो मिनिमम है ही
2: हाँ।
3: और जो जितने वहाँ से एक दूसरे मुल्क से छोड़कर घर गए जिनका जिनको कोई पता ही नहीं था हम जब आए हमें पता ही नहीं था करना क्या है हमारे पास कुछ नहीं था कहाँ जाना है क्या करना है कैंप में रहे हम लोग वहाँ से जब हम आए तो हम पानीपत में आके कैंप में रहे हैं कई साल गवर्नमेंट को लिए भी एक यहाँ पर इतनी समस्या पैदा हो गई थी नई गवर्नमेंट उनको पता भी नहीं है कि क्या करना है।
0: साहब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के जवानों को?
3: आज के जवानों को यही मैसेज दूंगा कि भाई प्रेम से रहें। अभी भी हमारे दिल में एक्चुअली बताएं तो हमारे दिल में वो ऐसी कोई बात नहीं है कि बदले की भावना नहीं है। हम फिर भी अपने आप को लकी समझते हैं कि हम लोग यहाँ बैठे हुए आपसे बात कर रहे हैं
1: जी। हमने अगर इतिहास से सबक नहीं सिखाना तो कोई माफ़ नहीं करेगा। सच्चाई ये है कि आप यहाँ हैं या कहीं और हैं, हमारे ऊपर ही होगा क्योंकि हमने गलतियों से सबक, हम प्यार की भाषा को समझ ही नहीं पाए। प्यार और बंदूक साथ साथ चलती है। अगर आपके अंदर वो ताकत नहीं है तो हर आदमी आपका फ़ायदा उठाएगा। हम यहाँ पर भी उस तरफ जा रहे हैं, हमें एक दूसरे के लिए खड़ा होना ही होगा। हम दर्पण रेडियो की तरफ से हम ये प्रयास करते हैं कि अगर किसी के ऊपर कोई चीज़ बात आती है, हम ना किसी को सताते हैं ना हम अपने को सताने देंगे, दोनों में आएगा। हम जब किसी को ऐसा मौका देते हैं इसका मतलब है कि हमने उनके लिए सब कुछ खोल दिया है।
3: ठीक बात है, इस वक्त बिल्कुल पूरा अहिंसा भी काम नहीं कर रहा।
1: हाँ, अहिंसा का क्या मतलब होता है? हम भारतीय, सबसे पहली बात है कि हम पैसे वाले होते हैं, हम सौम्य होते हैं, हम लॉ अबाइडिंग होते हैं, सब कुछ वो काम करते हैं। जैसे हमें बोला जाता है हम लो हैंगिंग फ्रूट हैं, सबसे पहले इनके ऊपर अटैक करो। हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता और हमारे जो मेहमान हैं सब लोग इस चीज़ को एहसास करें कि अगर हमारे किसी के ऊपर भी कुछ बात होती है तो हम वहाँ पर उनके साथ में खड़े हों। अब जैसे कि एक टेम्पल में हुआ, अरे साहब वो टेम्पल में हम तो जाते नहीं, हमारे क्या लेना देना, अरे कल को तुम्हारे घर में होने वाला, काहे के लिए वो करते हो?
0: सही बात।
1: तो हाँ, सबक हमारा ये है, सबक हमारा ये है कि नहीं, हम एक साथ में खड़े हैं और हम मानवतावादी हैं, हम किसी का नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम भी तो मानव हैं, हम कैसे उस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे, ये मेरा रूप है।
0: चलिए शारदा जी, आप बताएं आप क्या कहना चाहेंगे? ब्रह्म शर्मा जी बोलना चाहेंगे या आप बोल? जी
4: लुक बैक, उस समय को देखता हूँ, याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत भारी इंसानियत से गलती हुई है। इतने लोग बेगुनाह मारे गए, मैंने अपनी आँख से भी देखा है एक आदमी को मरते हुए, क्योंकि ही वॉज नॉट ऑफ दैट रिलीजन जहाँ उसने दूसरे
0: मुझे होना चाहिए।
4: तो ये इतना मुझे इस समय भी दुख होता है, तो मैंने लुक बैक आई फील इट वॉज ऑल ए फॉली, बिल्कुल बेवकूफ वाला काम था जो हमारे जिससे भी किया है, लेकिन अल्टीमेटली इट वाज नॉट ए गुड थिंग। मेरा एक्सपीरियंस ये है दैट पार्टीशन वाज नॉट ए गुड थिंग एट ऑल।
0: उसकी याद ही इतनी दर्द
1: आज उसका। आज मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि परिणाम, कर्मों का परिणाम जिसको कहते हैं, कभी कभी पूरे समाज को कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। आपने सुना होगा कि नेतन्याहू ने या कई नेताओं ने इसके ऊपर बात करी है कि जो ब्रिटेन है ना, उनकी जो बच्चियों के साथ में हुआ ग्रूमिंग गेम जिसको आपने सुना होगा, वो 2.5 लाख तो वो बोलते हैं लड़कियां, यंग लड़कियां, उनके साथ में जो हुआ है बीभत्स हुआ है। रेडियो पे बात करना भी बड़ा मुश्किल होगा आज उनके यहाँ हो रहा है और लोग कहते हैं कि जस्ट मैटर ऑफ टाइम जो उन्होंने करा था उससे कहीं ज्यादा उनके साथ में होगा
0: हाँ, तो
1: कम्स अराउंड और दूसरा क्या है ना कि जब आप झूठे होते हो तो आपको प्राइस पे करना पड़ता है अब वो हाइड कर रहे हैं वो दिखाना चाहते हैं कि देखो हम कितने सौम हैं लो सौम को
0: सबको पता है आप
1: सौम का मतलब क्या होता है तो
4: वी वर आई विल कॉल माय सेल्फ लकी आल्सो वी केम टू इंडिया और दे लुक्ड अस वेरी वेल और बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट मैक्सिमम एजुकेशन
0: सब कुछ अच्छे से हुआ
4: और फिर नौकरी एक से एक
0: अच्छी जी जी
4: ये सब
1: लेकिन लेकिन आप देखिए कि आप जैसे वहां से निकले हैं आज जो बलोचों के साथ मोहरा है ये लड़के लड़कियां कोई गलती नहीं है बम बम डाले जा रहे
0: हैं इनोसेंट लोग
1: और दुनिया खामोश है आपको कोई न्यूज नहीं मिलेगी केवल हम लोग तो ये सब चल रहा है अभी
2: कालरा जी को भी नहीं देते कालरा जी आप बताइए
5: ऐसा है कि माय फादर वाज नॉट ही वाज ओनली ए केमिस्ट हमें काफी दिक्कत पड़ी जब जलंधर में थे तो हम लोग उसके बाद रोपड़ चले गए आई मेट one of my father's friend's son unke sath kuch log mare gaye the wo bhi wahi se the jahan se hum the he was about my age we studied together and I have been lucky wherever I studied I was on a scholarship because my father could not afford initially and I have been lucky I've been here now and I came on a scholarship to this country as well
0: kya baat hai
2: nahi to ek baat main kehna chahunga jaise ki भारत और पाकिस्तान दोनों का विभाजन हुआ मुसलमान लोग थे यहाँ से भारत से पाकिस्तान गए कहते हैं उनके साथ अभी भी दुर्व्यवहार होता है उनको मुहाजिर कहा जाता है कहते हैं कि वो आउटसाइडर्स हैं उनको मंदी को लाइट
0: नहीं है आप,
2: आपको लगा कि भारत ने मतलब भारत माँ ने अपनी गोद में उनको आपको दिया और मतलब सम्मान दिया
3: बहुत एक्चुअली इंडिया लुक्ड आफ्टर अस वेरी वेल फ्रॉम डे वन जब हम लैंड किए तो अमृतसर में भी जैसे इन्होंने कहा था खालसा कॉलेज में कैंप बनाया था सब कुछ हमारे लिए किया तो गांव से लोग बैलगाड़ियों में रोटियां बना के ले आके आके लोगों को खिलाते थे उसके बाद एजुकेशन फ्री कर दी
0: उस जमाने में भी
3: जी हाँ
0: जब इतनी दिक्कतें चल
3: रही गवर्नमेंट ने पूरी तरह से हमारे हमारी जो है ना देखभाल की और जितनी ये नौकरी की बात कर रहे थे तो वो नौकरियों के और हमारे देखो मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने हम रिफ्यूजी हमें रिफ्यूजी कहा गया शुरू में लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन बाद में कितनी हुई मनमोहन सिंह आई के गुजराल और वो देखो फिल्म इंडस्ट्री में भरे पड़े हैं
0: जी हाँ
3: वो सारे वहाँ से आए हुए हैं और अगर उनको एक्सेप्ट नहीं करते लोग तो ये भी उनको नहीं मिलता
2: और दूसरी बात यह कि जो लोग वहाँ से आए थे उनको कॉर्नर हो गए थे भाई कुछ ना कुछ जीवन में करना है आगे बढ़ने के लिए तो उन्होंने दुगने जोश के साथ किया
3: उन्होंने जो भी काम किए
0: बड़ी अच्छे से एक्सेप्टेंस भी मिली
3: जी और छोटे से छोटा काम भी उसको छोटा नहीं समझा किया है लोगों ने जमीन पे बैठ के बेची हैं सब्जियां बेची हैं सिर पे रख के टोकरी जाके केले बेचे हैं
2: नहीं पर आप बताइए सब कि इस बात का गम तो रहा होगा कि आपने सब कुछ जमा छोड़ छाड़ के आए तो कितने जमीनें छोड़ी घर बार छोड़ा वहाँ पे सामान भी छोड़ा सब कुछ लेके नहीं आओगे उसका गम रहा होगा
3: वो गम तो बिल्कुल रहता है जी और वो अभी
0: वो
3: तक
0: जाएगा
3: है
0: नहीं।
3: वो तो वो जख्म जो है वो हरे हैं अभी भी वो ये है कि अब पीढ़ियाँ आ गई हैं चलते चलते भूलते जाते हैं लोगों को नहीं पता है
2: लेकिन आप बोलिए इस बात के बारे में
5: मुझे यहाँ तक ध्यान है जब हम वहाँ से चलने लगे थे तो यही बताया जाता था कि हम लोग बस जाएंगे थोड़े दिन में आ जाएंगे थिंकिंग एट दैट टाइम
3: लेकिन परमानेंट नहीं था
5: लेकिन जब अपना पत्तोकी में रेलवे स्टेशन पे बैठे थे मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा याद है कि इट वाज नॉट गुड सीन इट वाज नॉट ए गुड सीन और फिर रास्ते में जब गाड़ी ट्रेन रुक गई रायविंड में मुझे नाम स्टेशन का भी याद है लाहौर से थोड़ी देर ही पहले है ना बाद में है और अमृतसर थोड़ी देर पहले है तो वहाँ पे वी आर वेरी लकी कि उस वहाँ पे भी गोरखा था और नहीं तो वो सब मारपीट हो जाती है वहाँ पे
1: जी वैसे मैं फिर से बोलूँ कि अभी भी हो रहा है अभी कुछ साल पहले भी हुआ है कश्मीर में क्या हुआ है अभी भी क्या हो रहा है हमसे सीखने में हमारा जो है ना हमारा हिंदू का कहना मर जाओगे तो वाली बात है तो तो जैसे कि प्रोग्राम का होता है हम आपका बहुत तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपने इतना प्रयास करा आप प्रयासी है इस बरसात में आप आए हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे
3: धन्यवाद
1: जी
3: बोलने का चांस दिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: तो डॉक्टर साहब हम विनर के नाम ले लेते हैं तो हमने पांच जो हमारे जो एक एक टिकट है केदार जी के प्रोग्राम के लिए तो उनका नाम है मोहिनी रमेश जोशी जी मिथिलेश जी मोहिंदर गुप्ता जी रेखा राजवंशी जी और जो बटवारा फिल्म का जो पास जाता है वो जसप्रीत जी को जाता है हम आपसे संपर्क करेंगे प्रोग्राम के बाद में और जी प्रोग्राम से अब हम अलविदा होने वाले हैं इस सप्ताह के लिए
6: You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@dapanradio.org.au.
7: आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में ईमेल कीजिए feedback@dapanradio.org.au